लाल दुपट्टा हर लाल दुपट्टा उड़ के अरतरा हवा के झोंके से लाल दुपट्टा उड़ के अरतरा हवा के झोंके से तुझको पिया ने देख लिया खैर ठोके मन तुझ दिल देगा वो अगर अपनी जान देगा वो मन तुझ दिल

मन के तुझ दिल देगा वो मगर अपनी जान देगा वो उड़ के यार तेरा हवा के झोंके से मुझको पिया ने देख लिया।